जब संभ कर मदम माजो भर गए ममच गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिखे मम अगर बुखार समाज वाय खुरी जो बाल मा